ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 7 अक्टूबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापानी वैज्ञानिक सोआई केन्सो इस वर्ष के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के 2 विजेताओं में से एक हैं। उन्हें ये सम्मान असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटोकैटालिसिस की खोज के लिए दिया गया है। जापान के दक्षिणी प्रीफेक्चर ओकिनावा में हत्या और लूटपाट के संदेह में एक मरीन सैनिक की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सेना को 48 घंटे के लिए सभी गतिविधियां रोकने और 1 महीने तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी मरीन कोर के 20 वर्षीय लांस कॉर्पोरल डेविन जेकब बेलार्ड पर शनिवार को नाहा शहर के एक होटल में 39 वर्षीय स्थानीय महिला की हत्या कर उसका बटुआ और अन्य सामान लूटने का आरोप है। मरीन कोर के फुतेम्मा एयर स्टेशन में तैनात बेलार्ड को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। ओकिनावा क्षेत्र संयोजक और तृतीय मरीन अभियान बल के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन वॉटसन ने मंगलवार देर रात मानक और अनुशासन नोटिस जारी किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने ओकिनावा में तैनात सभी अमरीकी सैन्य कर्मियों को बुधवार दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए यूनिट संचालन रोकने का निर्देश दिया। इस अवधि के दौरान निजी काम के लिए सैन्य अड्डे से बाहर जाना और मदिरा सेवन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त सेवा कर्मियों को शुक्रवार से शुरू होने वाले 30 दिनों तक मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक घर पर रहना होगा। ओकिनावा के गवर्नर कोजा गेंता ने सोमवार को वॉटसन और अन्य लोगों को प्रीफेक्चर कार्यालय में तलब करके इस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और अमरीकी सेना से कठोर और प्रभावी उपाय करने की मांग की। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू का कहना है कि अमरीकी सैन्य कर्मियों से जुड़ी घटनाओं से स्थानीय समुदाय बेहद चिंतित है और ये कभी नहीं होनी चाहिए। बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में किहारा ने अमरीकी सेना की उस घोषणा का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि ओकिनावा में तैनात सभी सैन्य कर्मियों को 48 घंटे के लिए अपनी टुकड़ी की गतिविधियों को रोकना होगा और एक

महीने तक रात के कर्फ्यू का पालन करना होगा। उन्हें लगता है कि यह इस बात का संकेत है कि अमेरिकी सेना घटना को गंभीरता से ले रही है और अनुशासन कड़ा करने तथा पुनरावृत्ति रोकने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। कियारा ने कहा कि वे जानते हैं कि अमेरिकी पक्ष अपनी कार्रवाई दिशा निर्देशों की आगे समीक्षा करेगा। उन्होंने ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के तरीकों पर निरंतर बातचीत की उम्मीद जताई। गाजा में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुए बुधवार को 3 साल हो गए। मानवीय स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है क्योंकि लगभग 1 साल पहले संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद इजरायली सेना लगातार रुक रुक कर हमले कर रही है। गाजा पट्टी में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से 74,245 लोग मारे गए हैं, जबकि पिछले साल 10 अक्टूबर से संघर्ष विराम लागू होने के बाद 1,462 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में 3/4 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग आधी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां सर्दियों की बारिश से पहले जल भराव का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को अब भी जानलेवा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के एक मुख्य कारोबारी संगठन के प्रमुख का कहना है कि 2025 की तुलना में इस वर्ष कॉरपोरेट कंप्यूटर सिस्टम को एआई की मदद से हैक करने के प्रयासों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के अध्यक्ष यामागुची आकियो ने मंगलवार को अपने संबोधन में आईबीएम जापान द्वारा किए गए शोध का हवाला दिया। अपने संबोधन में उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों से अपने सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर करने का आग्रह किया है। तेजी से बढ़ते अत्याधुनिक साइबर हमलों के खतरे के बीच जापानी कंपनियों को सूचना सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की तत्काल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम में निवेश करने की भी आवश्यकता है। जापान यूजर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने सूचना सुरक्षा से परिचित कर्मचारियों की गंभीर कमी का संकेत दिया। 100 अरब येन यानी लगभग 63 करोड़ डॉलर का कारोबार करने वाली लगभग 3/4 कंपनियों ने कहा कि उनके पास साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों में 10 उद्योगों से संबंधित 950 से अधिक व्यवसायों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया कि मार्च में समाप्त हुए 12 महीनों में 7.1% कंपनियों को वायरस वाली ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सेवाओं में अनाधिकृत लॉगिन करने से 6.5% कंपनियां प्रभावित हुईं, जबकि 5.2% रैंसमवेयर हमलों की चपेट में आईं। इस बीच हैकिंग की घटनाएं रिपोर्ट करने वाली जापानी कंपनियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुजुकी मोटर का कहना है कि उसकी पहली इलेक्ट्रिक मिनी कार नवंबर के मध्य में जापान में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। जापान की इस सबसे बड़ी मिनी वाहन निर्माता कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में प्रवेश से इस वर्ग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। जापान की वाहन निर्माता कंपनी का कहना है कि ई स्काई मॉडल एक बार चार्ज करने पर 310 किलोमीटर तक चल सकता है। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक मिनी वाहन के लिए ये दूरी अपेक्षाकृत अधिक है। कर और सरकारी सब्सिडी सहित इनकी कीमतें लगभग 15.5 लाख येन यानी लगभग $9,800 से शुरू होगी। सुजुकी का कहना है कि उसका लक्ष्य प्रति माह 1,000 गाड़ियां बेचना है। अध्यक्ष सुजुकी तोशीहिरो ने कहा, हम मिनी वाहनों के व्यापक विकल्प पेश करने के लिए काम करेंगे ताकि उन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके जो पेट्रोल कार की बजाय ईवी वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जापान की प्रतिद्वंद्वी कंपनियां निस्सान, होंडा और मित्सुबिशी साथ ही चीन की बीवाईडी पहले ही मिनी ईवी की बिक्री शुरू कर चुकी हैं। सितंबर तक के 9 महीनों में जापान में बिकने वाली सभी मिनी कारों में मिनी ईवी की हिस्सेदारी केवल 1.5% के आसपास थी। इसका कारण ये है कि ये पेट्रोल मॉडल की तुलना में अधिक महंगी है और उपलब्ध मॉडलों की रेंज सीमित है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.